यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
2: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
3: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
4: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारी

0: अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्तर पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

0: है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। इस पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि को

0: वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय में केंद्र सरकार को वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस वाले वाहनों को ईंधन बिक्री से संबंधित पायलट परियोजना विकसित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रस्ताव किया है कि गैर बीमाकृत वाहनों को कवरेज प्राप्त होने तक पेट्रोल पंप से ईंधन न दिया जाए। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्र की एक खंडपीठ ने कहा कि देश में लगभग 56% वाहन गैर बीमाकृत हैं और ये स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय ने ऐसे वाहनों की पहचान के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा केंद्र को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित बीमा सत्यापन विकसित करने और मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन में सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ
2: दिस इज आकाशवाणी The News, read by Subhadra Ramachandran. An Indian flag commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals, who were on board the vessel were rescued safely. According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Minister of External Affairs, MEA, said targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance.

0: अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who are on board the vessel, were rescued safely. According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Ministry of External Affairs said targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speak up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counseling Committee, MCC, will begin Round 1 registration for NEET UG Counseling 2026 today. According to the official schedule, Round 1 registration and fee payment will remain open till the 12th of this month until 3 p.m. We have more from our correspondent.
2: Candidates can fill their choices between the 6th and 13th of this month. The choice locking facility will remain available to students between 12th and 13th of August. Meanwhile, the round 1 seat allotment process will open to students between the 13th and 16th of this month. Further, the result will be declared on 17th of August. Candidates who have been allotted seats have to report to the respective institutes between August 18th and 22nd. The participating institutes will verify the data of joint candidates on 23rd of this month. Ahead of the commencement of the counseling process, Health Ministry has released step-by-step tutorial videos to help candidates understand the registration, choice filing and seat allotment process on the MCC.

0: पोर्टल। ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
1: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussions on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS education ministers meeting and the 3rd BRICS senior officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The summer annuals of Amrit Udhyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udhyan till 15th of September. During this period, it will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. However, the Udhyan will remain closed on all Mondays for maintenance. Entry to Amrit Udhyan will be free of cost. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said reform multilateralism reflecting aspirations of the Global South is a need of the hour as the global order transforms. The Dr. Jaishankar held an interaction with permanent representatives from United Nations from 17 countries who are visiting India on a study tour. In a social media post, the External Affairs Minister said that the discussions touched upon technology, maritime safety, peacekeeping, development partnership and disaster response. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. In Assam, heavy rainfall continues, disrupting normal life in several parts of the state. The Brahmaputra and many of its tributaries are flowing close to the danger level at several locations. In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. In badminton, India's Isharani Barua defeated Lee So-hee of South Korea in the quarter finals at the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Assam today. And that's the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Munish Sharma. मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत डूबा। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारत आज से भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक भुवनेश्वर। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर हुई दमनकारी कार्रवाई की आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर पाबंदी और कड़ी की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय नागरिक थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
2: भारत आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं।

0: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती हुई विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया है। इसके लिए जारी नए नियमों के अंतर्गत विदेशी पत्रकारों को देश के अधिकांश हिस्सों से रिपोर्टिंग करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
2: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन और दमनकारी कार्रवाई से निपटने के तरीके को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच के दायरे में है। मानवाधिकार समूहों और प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने पत्रकारों और इंटरनेट पर प्रतिबंध तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी कार्रवाई की कवरेज को लेकर हाल में कई समाचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नए नियमों के अंतर्गत विदेशी पत्रकार केवल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ही स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अन्य किसी भी स्थान पर रिपोर्टिंग के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच कराने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
3: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमरीका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि इस बातचीत में मध्यस्थ के रूप में ओमान से वार्ता जारी है। कतर ने कहा कि राजनयिक प्रयास जारी है, लेकिन अमरीका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत की योजना नहीं है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में

0: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनीषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप में पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की ईशा रानी बरुआ कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज ईशा रानी ने दक्षिण कोरिया की ली सो ही को 18-21, 21-15 और 7-21 से हराया। प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पुरुष डबल्स के पहले दौर में कल कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने जीत हासिल की। हालांकि अच्युतादित्य राव, डोड्डा वरपू और अर्जुन रेड्डी पोचाना को हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में भारत का 33 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका के यूजीन हेवर्ड फील्ड में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत डूबा। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारत आज से भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक भुवनेश्वर में। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर हुई दमनकारी कार्रवाई की आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर पाबंदी कड़ी की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता हासिल। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवी वरीयता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. India to host third BRICS culture working group meeting in Bhopal from today. 13th BRICS education ministers meeting to also commence in Bhubaneswar. Pakistan imposes restrictions on foreign media after criticism over crackdown in POJK protests. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Fez Nure Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
2: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussions on culture. The Ministry of Culture said the meeting will bring together representatives from BRICS member states to

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रमुख व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुनौतियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेनदेन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि वापस लेने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त तक दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कल नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की बात की। श्री सावंत ने गृहमंत्री से इस मामले में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। डॉक्टर सावंत ने श्री शाह से 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण को शीघ्रता से लागू करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि अनुच्छेद 370 की शुरुआत ही अस्थायी शब्द से होती है, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इसे निरस्त करने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2019 में सरदार पटेल के संकल्प को दर्शाते हुए आवश्यक कदम उठाया। भारत ने पाकिस्तान

0: कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने के लिए बहुपक्षवाद की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के 17 देशों से आए स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सरकार ने सोशल मीडिया के उन दावों का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसमें डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra has said that country's economic growth continues to be supported by resilient demand and it remains world's fastest growing large economy. He said country's economy has performed better than expected in April-June quarter of this fiscal. Presenting monetary policy statement, Mr. Malhotra said, RBI has decided to keep the repo rate unchanged at 5.25%. The RBI governor said West Asia conflict continues to challenge the global economy by disrupting key trade routes. He said RBI has lowered the CPI inflation projection to 5% from earlier estimate of 5.1% for the financial year 2027.
2: Headline inflation has edged up above target as expected. The realized inflation for Q1, however, remained marginally lower than projections, reflecting limited pass-through of cost pressures. The higher inflation is mostly on account of fuel and food, with little signs of generalization of price pressures so far. Core inflation, excluding precious metals, continues to be benign, as projected earlier.
1: BJP has described 5th of August as a historic day, marking the 7th anniversary of the abrogation of Article 370. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Gaurav Bhatia said the constitutional provision was revoked, keeping with the spirit of the constitution. He said although Article 370 itself began with the word temporary, no previous government had shown the will to revoke it. He said that Home Minister Amit Shah in the year 2019 took the necessary step that reflected the resolve of Sardar Patel.
3: It's an historic day today because 7 years ago on 5th of August 2019, honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Shri Amit Shah Ji, the Home Minister, displaying the will of Sardar Patel Ji, ensured that the same is done. The leader of opposition, the immature, irresponsible part-time leader, is not letting the parliament function.
1: An Indian-flagged commercial vessel MSV Fez Nureolia sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal said, India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said reformed multilateralism reflecting aspirations of the Global South is the need of the hour as the global order transforms. Dr. Jaishankar held an

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

अगस्त लो आ गई उनकी याद में। आप सभी का स्वागत अभिनंदन, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा। और आज हम जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री को जिसकी चुलबुली मुस्कान, सहज अभिनय और दमदार संवाद अदायगी ने 3 दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री काजोल की, जिनका जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ। काजोल भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध मुखर्जी समर्थ परिवार से हैं। उनकी मां प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा और पिता फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी।

सदाबहार मुस्कान की मलिका काजोल ने वर्ष 1992 में फिल्म बेखुदी से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद बाजीगर, ये दिल लगी और फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। सिमरन का उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार पात्रों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में अभिनय किया। काजोल की खासियत रही कि वे केवल रोमांटिक भूमिकाएं ही नहीं निभाती थीं, बल्कि गुप्त में नकारात्मक किरदार, दुश्मन में चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका, फना, माय नेम इज खान, त्रिभंग और दो पत्ती जैसे फिल्मों में गंभीर अभिनय से भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया काजोल ने।

कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद और आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री काजोल। भारतीय सिनेमा की चर्चित सम्मानित अभिनेत्री काजोल, वर्ष 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी हैं, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और साथ ही साथ फिल्म गुप्त के लिए सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं काजोल को।

बात की जाए अगर काजोल के अभिनय की और सह कलाकारों की, तो यूं तो काजोल ने लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। आमिर खान, अनिल कपूर, संजय दत्त, सैफ अली खान, लेकिन अगर उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही तो वो रही शाहरुख खान के साथ। और बात करें अगर रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में शाहरुख उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। और जोड़ी, जी हाँ, जोड़ी उनकी पर्दे पर कई बार नजर आई और सुपर डुपर हिट रही अजय देवगन के साथ। और व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने 24 फरवरी 1999 को शादी की अजय देवगन के साथ। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित विवाहित जोड़ियों में शामिल है। दो बच्चे न्यासा और युग। अभिनय के साथ साथ काजोल सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े कई अभियानों का समर्थन करती हैं।

काजोल जानी जाती हैं अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए। काजोल की मुख्य फिल्मों की बात करें तो बेखुदी, बाजीगर, ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, गुप्त, दुश्मन, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, हम आपके दिल में रहते हैं, इश्क, कभी खुशी कभी गम, फना, यूमी और हम, वी आर फैमिली, माय नेम इज खान, दिलवाले, तान्हाजी। सलाम वेंकी, द ट्रायल, दो पत्ती और माँ जैसी फिल्में, साथ ही साथ त्रिभंगा जैसी फिल्में उन्हें एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित करती हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि अभिनय केवल सुंदरता से नहीं बल्कि प्रतिभा से, आत्मविश्वास से और मेहनत से लोगों के दिलों में उतरती है। उनकी हंसी, उनकी आंखों की अभिव्यक्ति और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता उन्हें अपने दौर की सभी अभिनेत्रियों से अलग बनाती है।

कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद अपने आखिरी मोड़ पर। कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी काजोल। उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि काजोल स्वस्थ रहें, सानंद रहें, आने वाले वर्षों में भी अपने शानदार अभिनय से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां देती रहें। इसी शुभकामना के साथ कल एक बार फिर आपसे मुलाकात के वादे के साथ दीजिए आज्ञा अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को छोड़े चलती हूँ आपको कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों के साथ अभिनय काजोल का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated.

0: Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC

0: agency decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मिडडे न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
4: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक

0: ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22,00,000 चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का

0: इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडीचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का जीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है जो जिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुँच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी टक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
3: After a detailed assessment of the evolving
2: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज ये विधेयक सदन में पेश किया था। इस विधेयक का देश बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि उचित प्रशिक्षण से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Lok Sabha has been adjourned for the day after passing the Bankers Books Evidence Bill 2026. When the House assembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill, which seeks to provide a law relating to evidence

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी, बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा ने आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों को कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का विरोध किया और उनका अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन पार्टियों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था, हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी आज ऐसी स्थिति देखने को मिली। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि उचित प्रशिक्षण से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। ईश रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. When the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill which seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Rajya Sabha has taken up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 for consideration and return. The bill aims to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. When the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill, which seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. The Rajya Sabha has taken up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 for consideration and return. The bill aims to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. Lok Sabha has already passed the bill. Earlier in the day, the upper house also witnessed repeated disruption. Prime Minister Narendra Modi has said that lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A 7 years ago. In a social media post, Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to the progress of Jammu and Kashmir as well as Ladakh and to ensure that every citizen has the opportunity to dream big, achieve and contribute to the making of a Vikasit Bharat. Talking to Akashvani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satpal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step towards the complete integration and development of Jammu and Kashmir.
3: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
2: India today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. In response to media queries regarding comments made by Pakistan Foreign Minister on the so-called Yom-e-Istehsal, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said India categorically rejects attempts by Pakistan to observe the so-called Yom-e-Istehsal. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been, and shall forever remain an integral and inalienable part of India. He stressed that the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are entirely an internal matter of India. These decisions have brought unprecedented socio-economic development, good governance, and democratic empowerment to the people of the region. The Monetary Policy Committee, MPC, of the Reserve Bank of India, RBI, at the conclusion of its policy meeting today, decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Repo rate is the interest rate at which the central bank lends short-term money to commercial banks against government securities. Making the announcement, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6%. And reduce the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. The Supreme Court has said that authorities must exercise restraint while responding to young student protesters. The Apex Court said any violent response to prevent violence would only aggravate the situation. A bench led by Chief Justice of India Suryakant today made the remarks while hearing a plea seeking action against the CJP over its alleged role in recent violence during protests in Delhi and other parts of the country. And with that, we end this news bulletin.

5:16 स्टूडियो की घड़ी में वक्त है। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है चाय और क्लासिक्स।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चाय और क्लासिक्स में पहला गीत आप सबके लिए बिल्कुल तैयार। अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज में सुनेंगे आप कार्यक्रम का पहला गीत।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: कार्यक्रम छाया क्लासिक्स 101.1 FM गोल्ड खाना सोना पे सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को और 5:28 स्टूडियो की घड़ी में वक्त

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति, आप सुन रहे हैं परियोजना प्रस्तुति। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, और आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी लोकप्रिय बचत योजना की जो बेटियों के उज्जवल भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, बेटी परिवार की शान होती है और उसकी शिक्षा तथा भविष्य की तैयारी हर माता पिता की प्राथमिकता होती है। इसी सोच को मजबूत बनाते हुए वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर उसके पिता माता या कानूनी अभिभावक डाकघर पर अथवा अधिकृत बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए यह खाता खोल सकता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे जुड़वा या 3 बेटियों के जन्म पर नियम के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान भी उपलब्ध है। इस खाते में हर वर्ष जो है आप न्यूनतम निर्धारित राशि और अधिकतम सीमा तक जमा किया जा सकता है। सरकार समय समय पर इस योजना के ब्याज दर निर्धारित करती है जो अन्य कोई सामान्य बचत योजना की तुलना में आकर्षक मानी जाती है। जमा राशि पर लागू नियमों के अनुसार कर संबंधी लाभ भी उपलब्ध होते हैं। इस योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए नियमों के अनुसार आंशिक निवासी की सुविधा मिल सकती है, आंशिक निकासी की भी सुविधा मिल सकती है। वही खाते की परिपक्वता निर्धारित अवधि पूरी होने पर जिस बेटी के उच्च शिक्षा या विवाह के लिए ये आर्थिक सहायता मिलती है। यदि आप यह योजना जो है इसमें नामांकित करना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं तो नजदीकी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में जाकर अवश्य अपने दस्तावेज के साथ जो है आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़े नियम जो हैं ब्याज दर, जमा राशि, जमा सीमा राशि और अन्य नियमों के लिए जानकारी के लिए भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। बेटियों का सशक्त भविष्य केवल एक अच्छे संस्कारों से ही नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक योजना से भी बनता है। सुकन्या समृद्धि योजना इसी दिशा में एक सार्थक कदम है जो छोटी छोटी बचत को बड़े सपनों में बदलने का जो है अवसर देता है। इसी संदेश के साथ आज परियोजना प्रस्तुति में यहीं तक।

100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

चल दोस्तों, अब थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है वो ये कि बीरभूम, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में जो है अगले 2-3 घंटे के अंदर, यानी कि 5 बजे का ये जो है 4:45 बजे का ये मैसेज है, अगले 2-3 घंटों के अंदर जो है मध्यम से भारी गरज के साथ बारिश होने वाली है, तीव्रता के साथ वर्षा होने वाली है, 30 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से जो है हवाएं भी चलने की संभावना है। तो ऐसे में जो है खुद को सेफ रखिए, और जो है अगर ये बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और चमक रही है, साथ में जो है आप अगर बाहर हैं तो अपने आप को सेफ रखने का कोशिश करिए, और अगर आप घर पर हैं तो कोशिश करिए कि बाहर ना जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो, और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपना रेनकोट, अपनी छतरी अपने साथ ले जाएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, बारिश में भींगे नहीं।

सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक स्मैश चश्मदा आप सबके साथ और शाम का वक्त हाथ में चाय की कप और साथ में ये प्यारे प्यारे गीत मौसम और भी सुहाना लगता है क्यों है ना 101.1 FM गोल्ड खड़ा सोना पे सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चाय क्लासिक स्मैश चश्मदा आप सबके साथ और रुक करते हैं अगले गीत की ओर और हाँ मौसम चूंकि एकदम बारिश वाला है तो ये जो सारे गीत हैं वो भी आज मैं आपको बस बारिशों वाली ही सुना रही हूँ एंजॉय करते हैं आज की शाम बारिश और हम साथ साथ

0: रुक करेंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक का, और न्यूज ब्रेक के उस पार एक बार फिर हाजिर रहूंगी मैं चाय और क्लासिक के साथ 6:20 पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, including the Chief Justice of India. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the Digital Personal Data Protection Act 2023 has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. He said the Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered

0: under intermediary definition, and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, "Lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A on this day in 2019. Talking to Akashwani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satpal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step.
1: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
0: India today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istisal. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been, and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India, and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, at the conclusion of its policy meeting today, decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. The MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection to 6.7% from 6.6% in the current financial year. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven women's singles players advancing to the second round, while all six Indian men's singles shuttlers crashed out in the opening round. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, बदलती जीवन शैली के साथ आज हमारे भोजन की थाली भी तेजी से बदल रही है। पैकेज्ड खाद्य उत्पादों का उपयोग बढ़ा है, ऑनलाइन माध्यमों से खाद्य उत्पादों की खरीद आसान हुई है और उपभोक्ताओं के सामने विकल्प भी पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। ऐसे समय में ये सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पाद सुरक्षित हों, उनकी गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप हों और उन पर दी गई जानकारी सही तथा पारदर्शी भी हो। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परीक्षण प्रक्रिया को अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय बनाना है। साथ ही खाद्य उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी यानी किसी उत्पाद की पूरी यात्रा का पता लगाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भी खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों और गलत लेबलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके और वे सोच समझकर निर्णय ले सकें। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच इतनी महत्वपूर्ण आखिर है क्यों? इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स किस तरह बदलाव ला सकते हैं, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी का क्या महत्व है और भ्रामक लेबलिंग पर रोक लगाना उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्यों आवश्यक माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा केवल स्वाद या गुणवत्ता का विषय नहीं है, बल्कि ये सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट हो, उसमें हानिकारक रसायनों की मात्रा तय सीमा से अधिक हो या उस पर दी गई जानकारी वास्तविकता से मेल

0: खाना खाती हो तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक परीक्षण और प्रभावी निगरानी किसी भी मजबूत उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बाजार में बिक रहे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस दिशा में सरकार लगातार विभिन्न कदम उठा रही है। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक रिपोर्ट।
1: देश में विभिन्न सरकारी प्रयोगशालाएं नियमित रूप से खाद्य और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की जांच करती हैं। इन परीक्षणों के दौरान ये देखा जाता है कि उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके लिए रासायनिक परीक्षण, सूक्ष्म जीवों की जांच, कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण, भारी धातुओं की मौजूदगी और अन्य गुणवत्ता संबंधी मानकों का परीक्षण किया जाता है। इन वैज्ञानिक जांचों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे बाजार का आकार बढ़ रहा है और नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं, परीक्षण प्रयोगशालाओं का काम का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में नमूनों की जांच, कम समय में सटीक परिणाम देना और नई तकनीकों के अनुरूप परीक्षण व्यवस्था को लगातार अद्यतन रखना आज एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। यही कारण है कि अब परीक्षण व्यवस्था को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल डेटा विश्लेषण और स्वचालित परीक्षण प्रणालियों के उपयोग से जांच प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इससे न केवल परीक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी और मजबूत होगा।
0: श्रोताओं, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन बदलते समय में केवल पारंपरिक तरीकों से काम करना पर्याप्त नहीं है। आज जरूरत ऐसी तकनीकों की है जो कम समय में अधिक नमूनों की जांच कर सके, त्रुटियों की संभावना को कम करे और गुणवत्ता परीक्षण को अधिक सटीक तथा भरोसेमंद बनाए। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों को परीक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव किस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत बना सकता है।
2: तकनीक आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल रही है और अब इसका प्रभाव उत्पादों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसका उद्देश्य परीक्षण प्रक्रिया को अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय बनाना है। प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में आने वाले नमूनों की जांच में कई चरण शामिल होते हैं। नमूनों का पंजीकरण, उनका वर्गीकरण, परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने जैसी प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों को तेजी से विश्लेषण कर सकती है, जबकि रोबोटिक्स दोहराए जाने वाले परीक्षण कार्यों को अधिक सटीकता और एकरूपता के साथ पूरा करने में सहायता कर सकती है। इससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और जांच की गति भी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षण प्रक्रिया को तेज बनाना नहीं बल्कि उसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना भी है। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों, डिजिटल प्रणालियों और उन्नत विश्लेषण तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इससे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी भी है। ट्रेसेबिलिटी का अर्थ है किसी उत्पाद की पूरी यात्रा का रिकॉर्ड उपलब्ध होना, यानी उसका उत्पादन कहाँ हुआ, वह किन चरणों से होकर बाजार तक पहुँचा और गुणवत्ता परीक्षण कब तथा कैसे किया गया। यदि किसी उत्पाद में बाद में कोई समस्या सामने आती है तो ट्रेसेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से उसके स्रोत की पहचान करना और आवश्यक कार्रवाई करना आसान हो जाता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: श्रोताओं, किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक ये भी है कि उस उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को सही और स्पष्ट जानकारी मिले। यदि पैकेज पर लिखी जानकारी भ्रामक हो या उत्पाद के गुणों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जाएं, तो उपभोक्ता सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए गुणवत्ता परीक्षण के साथ साथ पारदर्शी लेबलिंग और जिम्मेदार विपणन भी उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आधार है। आइए अब समझते हैं कि इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI तथा सरकार किस प्रकार काम कर रही है।
1: आज अधिकांश उपभोक्ता खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर लिखी जानकारी पर भरोसा करते हैं। उत्पाद में क्या सामग्री है और उसका पोषण मूल्य क्या है, उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ऐसी जानकारी उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि पैकेज पर दी गई हर जानकारी सही, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त हो। इसी उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापनों पर लगातार निगरानी रखता है। यदि किसी उत्पाद पर ऐसे दावे किए जाते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है या जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं तो उनके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और प्राकृतिक गुणों से जुड़े दावों को लेकर निर्धारित मानकों का पालन आवश्यक है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता किसी भ्रामक प्रचार के आधार पर नहीं बल्कि सही जानकारी के अनुसार अपना निर्णय ले। उपभोक्ता संरक्षण केवल नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जागरूक उपभोक्ता भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए लोगों को खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेज पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ने, निर्माण और उपयोग की तिथि देखने तथा केवल अधिकृत और मानक अनुरूप उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। एक ओर जहां आधुनिक प्रयोगशालाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें गुणवत्ता परीक्षण को अधिक सक्षम बना रही है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शी लेबलिंग, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी और प्रभावी नियामकीय निगरानी उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को और मजबूत कर रही है। इन सभी प्रयासों का साझा उद्देश्य यही है कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद सुरक्षित हों, गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और उपभोक्ताओं का विश्वास उन पर बना रहे। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रोताओं, तेजी से बदलते बाजार और नई तकनीकों के इस दौर में उपभोक्ता संरक्षण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक परीक्षण, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी लेबलिंग और जागरूक उपभोक्ता, ये सभी मिलकर एक सुरक्षित विश्वसनीय उपभोक्ता व्यवस्था की नींव रखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

हाँ भाई, बारिश में जो है मन नाचता है, लेकिन कभी कभी जो है बारिश ज्यादा भी हो जाती है। जैसे अभी ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है, मतलब नारंगी अलर्ट। उत्तर 24 परगना के कुछ जिलों में जो है कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान, आज की शाम की बात है, 6:10 पर ये जो है अनाउंसमेंट आई है कि इस वक्त जो है मध्यम से गरज और बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की भी बहुत संभावना है। और रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप सब जो है सेफ जगह पर रहें, बहुत ज़रूरी ना हो तो बारिश के वक्त जो है बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, अपना रेनकोट, अपनी रेन छतरी अपने साथ लेकर चलें। 6:28 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, और मुझे कहना होगा अब आप सबसे टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना। जाते जाते छोड़े जाऊंगी आपको सुरेश वादेकर और अनुपमा की आवाज में इस गीत के साथ, अनुपमा देश पांडे की आवाज में इस गीत के साथ।

0: नहीं प्राची, राहत ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये राहत की सांस है, बट मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में है या जो रेजिलेंस की बात अभी गौरा कर रही थी, तो मुझे लगता है शायद उसी को उन्होंने अपने आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है सेंट्रल बैंक का, वो उन्होंने उसी उसको और मजबूती से पेश किया है। आप अगर उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जहाँ तक महंगाई की बात उन्होंने कही है कि अभी भी महंगाई खाली फूड और फ्यूल और में ही जो है जो एक चिंता का सबब है, और दूसरा उन्होंने जो चिंता जताई है वो है खरीफ की जो सोइंग चल रही है इस समय और जो मॉनसून और एल नीनो का इम्पैक्ट, तो वो एक दो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज। हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो डाइवर्सिफिकेशन के सरकार ने कदम उठाए हैं क्रॉप्स के, और जो हमारे पास अभी भी फूड ग्रेन के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो इसीलिए आरबीआई ने शायद जो महंगाई का जो उनका आकलन था, जो एस्टिमेट था, उसको भी मार्जिनली घटाया है। साथ साथ जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की और जीडीपी का भी आकलन जो है उसको भी ऊपर किया है। पहले पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इट वाज 6.6 और इस बार उन्होंने 6.7 का एस्टिमेट किया है फॉर दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं ना कहीं, और अगर आप रूरल डिमांड देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइट, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो इंटैक्ट हैं एंड देयर इज नथिंग टू वरी।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफ़ी रेजिलिएंट नजर आए। बहरहाल, इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा।
2: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और खबर। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
0: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरबीआई रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसमें वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
1: जी,
0: उनका जो उसका शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 से 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज़्यादा होता है।
1: चेंज होते हैं।
0: हाँ, जो 500 का नोट है वो आप रोज़ रोज हर चीज़ में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स, और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल।
3: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer

0: for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government have decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity, with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a six-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labor, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3 in July, from 57.1% in June. So that here we're seeing figures, and we're also seeing mixed indications. And we also know that a lot of seasonal adjustments, normally some months it does traditionally fall and does pick up later. Anything, any area of concern? Because we're moving overall over the indicators, we're seeing a marginally downward movement.
1: No, Gaura, I don't think it is anything of concern, obviously. And also this PMI index, it's also gives us it's a futuristic indication of things to come. So the heartening, still what is heartening in this is that it is above 50%. So anything above 50% indicates that there is expansion, there is in demand. So nothing to worry. And the other important why we should watch this data is also because, especially the service index, because almost 50% of Indian economy is now service sector. So I don't think there is anything to worry. Yes, obviously, and this is despite so much of uncertainty. And so I don't see still anything which is should be a matter of concern.
0: Right. Okay. It could be considered in, as they say, in the normal flow of things.
1: And it is sometimes it's also month to month dips.
0: Absolutely.
1: So probably then next month it picks up.
0: And not read too much into it.
1: Yeah. And it is, since it is still futuristic and above 50%, so I don't think anything to concern.
2: आगे बढ़ते हैं गौरा और जायजा लेते हैं एशिया और यूरोपीय बाजार का. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4% और जापान का निकेई 3.5% से अधिक बढ़ा. बात यूरोपियन शेयर बाजार की करें तो आज प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांक मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.3% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी 0.2% नीचे कारोबार करता नजर आया.
0: Look at the US markets. Wall Street ended higher yesterday, with the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 closing at a record high. The surge was driven by hopes of de-escalation in West Asia, a decline in crude oil prices and strong quarterly earnings reports. The Nasdaq Composite Index climbed 2.6% to close at 26,585. The S&P 500 surged 1.8% to settle at 7,736. And the Dow Jones Industrial Average jumped 1.7% to end at 54,085. On the economic front, countries' goods and services trade deficit dropped by 5.6% in June to $73.3 billion as compared to May. According to a report released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, exports declined by $2.9 billion to $314.7 billion, and imports were down by $7.3 billion to $388 billion in June on a sequential basis. Siddharth, before we talk about the international markets, quick, like this is just a paragraph that I read just now. The U.S. economy's, fall in exports. And is it also somewhere linked to tariff imposition by the Trump administration?
1: I think, Gaurav, obviously, because there have been retaliatory steps also taken by the economies which have been impacted by tariffs, and that would be one factor. But I think also, yes, because there have been cost pressures also in the US economy because of the energy disruption and the inflationary pressures in the US economy also. But I would still say there's a the green the US markets back into green, especially more after the results of the companies which are into artificial intelligence. The probably people investing in those stocks also have taken they're kind of coming to a situation where they are also ready to accept the high huge investments into these companies after the returns or the results that they have seen. So right. Not only of these, also of the data companies, plus as you also said, the falling crude oil prices, the if there is peace in US,
0: and hopes of the peace, I think. Yeah. It's all linked to hopes, but I think somewhere,
1: and also yes, and also another thing which Fed last week didn't raise the interest, so that also has kind of also smoothened and has given the investors confidence back. Plus also the steep fall that we saw in AI stocks, so that kind of revaluation has also kind of brought in people back to the markets.
0: Right.
2: तो सिद्धार्थ, क्या ये कहना उचित होगा आज की तारीख में कि एआई को लेकर के जो भय जो एक लोगों के दिल में था वो अब धीरे धीरे निवेशकों के जहन से उतर रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एशियाई बाजार के संदर्भ में, तो आप क्या इससे सहमत होंगे कि अब ये भय उतर रहा है, या फिर अभी कहीं ना कहीं और भी देखने की ज़रूरत है और वक्त लेने की ज़रूरत है?
1: देख प्राची, मुझे लगता है ये मतलब अगर मैं एकदम से कहूं कि नहीं ये खत्म हो गया ये भय, तो ये सत्य नहीं होगा. क्योंकि जब ये भय आया था तब भी आप देखेंगे जो जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं साउथ कोरियन कॉस्पी, तो वहां पे जो दो बड़ी कंपनियां उनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले थे यूएस की कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स वगैरह बनाने,
2: यानी ये कड़ी वहां से जुड़ी हुई.
1: हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत बड़ा रोल है उनका वहां पे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां दुनिया को जो सप्लाई कर रही चिप्स वो साउथ कोरिया के मार्केट में ही है. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से आता है तकरीबन 50%. तो ये जल्दबाजी होगा कहना कि अब वो भय खत्म हो गया. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो एक अब जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना भी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पार्ट है. हाँ, अब वो उसकी वैल्यूएशंस, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा, वो आने वाले समय में तय होगा. और अभी ये कह देना कि भय खत्म हो गया, मुझे लगता है जल्दबाजी,
2: यानी कुछ चीजें गौरा भविष्य के गर्भ में रहने देनी चाहिए.
0: राइट. इन फैक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ द फियर लिंक्ड टू दिस, आई थिंक द कंसर्न दैट it's a bubble, it's a very big bubble, it's going out of proportion, that somewhere has been moderated, and I think also strengthened by the fact that, you know, it's not really a bubble, but it's a sunrise area.
1: Or would do the kind of investment justify the earnings? Probably that also is a reason.
0: Right. Our next story, government has operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023. The framework provides a comprehensive policy and procedural architecture for facilitating inventory-based cross-border e-commerce exports of goods manufactured or produced in India. It incorporates several safeguards to ensure that the benefits of e-commerce exports accrue to Indian manufacturers and MSMEs while maintaining regulatory oversight. It also provides for timely payments to Indian sellers within the prescribed timeline, irrespective of the receipt of payment from overseas buyers. A quick comment here, Siddharth, because one of the grudges of the MSMEs is that, you know, we want a quick turnaround time for the money to come back to us.
1: Timely
0: and
1: payment.
0: This will, yes, because that keeps them going.
1: Yeah, I think one more step in the direction of ease of doing business and facilitating the process of for our exporters, and also obviously taking care of the interest of the MSME, small scale industries.
0: Right. Crude oil prices, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $80.45 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 0.8% higher at $76.37 per barrel when reports last came in. Right. I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram. A short while ago.
2: Multi-commodity exchange में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% बढ़कर 1,45,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.7% की बढ़त के साथ 2,27,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सिद्धार्थ, समय की परिधि में रहते हुए मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगी सोने के दाम पर खास करके, और एक सोने चांदी अगर आप दोनों के दाम पर बताएं तो बेहतर है।
1: नहीं देखिए, सोना अभी तक जो बॉटम हमने देखा इस पिछले 2-3 महीने में, हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वहाँ बाइंग आ रही है। लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है। और उसके दो प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो US के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा। तो वो दोनों कारण है, क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब।
1: आप दोनों को भी धन्यवाद।
0: थैंक यू सिद्धार्थ। Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के

0: विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
4: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बॉम्ब फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का

0: टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
1: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर

0: क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को एक विशेष प्रशिक्षण के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान है। सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने कहा कि सरकार से बातचीत नहीं होने पर 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। ये घटना मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में हुई जहां सेना के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया। घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसिन सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।
4: The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion.
3: The Lok Sabha has passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing